सद एकोंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वचल त्यो लो जियो गुरु शब्द समावे आवरण जाने को जियो जगदाता सोए भगत वचल त्यो लो जियो गुरु शब्द समावे आवरण जाने को जियो आवरण जाने शब्द गुर के एक नाम दियाव है प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पाव है आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अतल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर बाना गुर भाया गुरु जावे हर प्रभ पास जियो सतगुरु करे हर पे बिनती मेरी भेज रखो अरदास जियो भेज राखो हर जन केरी हर देव नाम निरंजनो अंत चलद्या होए बेली जमदूत काल निकंजनो सतगुरु की भेंती पाए हर प्रभ सुने अरदास जियो हर दार कृपा सतगुरु मिलाया धन धन कहे सब पास जियो

दान विवेक दान विसा दान परोसा दान ताना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी देश नान चौकिया जुंडे बुंगे जुगो जुग अटल

गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो हे नमानिय दे मान तानिय दे तान योति अद्योट सच्चे पिता आप वाहिगुरु वाहिगुरु थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग ऑफ गैदरिंग अ साध संगत टू बाउ एट योर फीट टू सिंग योर प्रेजेस टू हियर योर हुकम नामा थैंक यू फॉर एंसरिंग ऑल ऑफ द साइलेंट प्रेयर्स ऑफ द साध संगत. Thank you for blessing all those in need of your healing. Thank you for sending Sri Singh Sahib, Bhai Sahib, Harbhajan Singh Khalsa Yogi Ji to bring your light to us, to put us on this path. May we always cherish and uphold our Dharma. Thank you for this continuation of the city of Kanpat. It's dedicated to worldwide peace and prosperity, health and healing for BBG. Blessings for Sahibhajan Khal, Kar, all the other names on this list. At this time, let us chant a call for our brother Darshan Singh. Inhale.

संगला तूर निराला हर अंतर हर रस पाया निशदामन जियो चमक चंडारना देख।